BFB Gurkha Bidi Sunil and Sasra Dara Karikromhal Kafulka Kohami Poyliganta Matson, Radabigo Matsa Mamoili Rakira Kusu, Yusame Masi Coca Colaku, E Sura, Rotsak Tatiko Parima, Obishabini, Mozankari Rakira Kusu Sutam, Risigari, Hami Rotsak Tatirakni Krom Mazi, Abobani Lago, Orko, Rotsak Tatia, Seventh Marekusa, Sato Masi Reku, Ukta Botalku, Yu Akar Coco Kalapanoni Samagri Mati, एक हो बने गलत बुझाई का कारण कोका कोला को फल को चित्र बाटा पीड़ित भाई रा विकास करी को बताएं सा इसी गरी आठों रोजक तथ्य रखा कोका कोला को ओलंपिक संघ को संबंध से यूसी 1928 मा एम्स्टर्डम मासी इसलिए को भाई को तीसरा ये से मासी कंपनी लामो समय देखी से ओलंपिक संघ जुड़ी को था रॉबी शब्दी दावे को माझमा रोजक तथ्य रुको का कोला को बारे में मोराक देने का नीचे स्रोता अलीगुला ग्यावनस लागो यू मीटो गीत सुनी क्रम तरफा